बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुजाता।

0: जन्नत है तो बस यही है, यही है, यही है।
1: इनी ओरो निमिषो पाटिकल कोंडा धन्यमावटे केटोंडिरिकुन्नु अहल्या FM 90.4।